0: सबैको रेडियो सामुदायिक रेडियो रोल्पा 93.8 MHz।
1: स्टुडियो टाइम अहिले दिउँसोको 3 बज्यो।

12,000 को इंटरनेट बोनस। संपर्क 9801004477। क्लासिक टेक जतिमा चाहियो त्यतिमा पाइयो।